इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: तो कब करेगी शादी?
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तू दुनिया में सबसे अलग है।
0: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

धा ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता किट धा ता ता किट दे न धा ता किट धा तेरे किट कदा ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता ता कदे मिधा ता किट धा ता ता किट दे न धा ता किट धा तेरे किट कदा।